करे अच्छा तोए सचता पर जानिए जस सच तरे प्यार नाओ सुन रहस्य तपाए बुद्वार सचता पर जानिए।

सब हमारी जो हम बाले बाल होते हुए सलामत करके गया हरिया बड़े तुम्हें विचार विचार है।

फरीदा रोटी मेरी काट की, लावण मेरी भुख, जन्ना खाधी चौपड़ी, कने सहन गे दुख।

आस बोले सतगुरु गुरु गरीब नवाज सांझी वालता दे उपदेशक ज्ञान दे सागर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मल बैठे गुरु प्यार वाले हो बड़ी अपार बख्शिश सतगुरु जी ने वरताई है जो गुरु पातशाह वालों बख्शे हुए उद्दम सदका अपनियां जिंदगियां दे अमोलक पल गुरु चरणा विच जुड़ करके सफलियां करन दा यतन कर रहे हो। आओ गुरु प्यारियो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण कर दियां हो वो चल रहियां लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਰਸ ਔਰ ਜਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ।

या सिखी किसा स्वस नाल निवाहित नादिक मईदा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे

गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया।

देह जोर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा।

दोहरा गया पहिया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को

पंथ सब सीखन को कमै गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिलवो चै खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहे ना ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बोले

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरे, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, नर्मदे ठंडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला तीजा,

भाई बचित्र सिंह जी का चेहरा भी केवल नेत्र नहीं उन्होंने चेहरा भी कहते उस वेले एक वक्री जी लाली उन्होंने चेहरे उत्ते नज़र आई और शमश कहें दाड़ा बड़ा फबदा उन्होंने चेहरे उत्ते

एक शेर बड़ा भयानक उदा रूप जड़ा होवे ते वो एकदम जंप करके किसे दे उते उन्हें अटैक करना होवे हमला करना होवे। इस तरह भाई बचित्र सिंह जी घोड़े ते सवार हुए इस लोहगढ़ दे

यतन किए जा रहे हैं, बड़िया कोशिशा कीतिया जा रही हैं कि किसी तरह इस हाथी नू रोकिया जा सके। कहिंदे यतन हटावन को कर हारे, हार गए, थक गए, किसी दे भी काबू विच हुण इह हाथी जिहड़ा वह नहीं आ रहा। डांटे कई उन्होंने उन्हों डांट भी रहे ने, बाबू उची उची आवाजा मार मार के कई नेजे भी उन्हों खबाउंदे आ ताकि किसी तरह रुक जाए, पर वह हाथी कित्थे रुकदा है? कहिंदे वह

सच्चा तखत निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अपोल ना पुल्लो रतन नाम अपार कीम नह पवो कीम नो पवे अमूल्लो जय कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए।